सयों रेडियो, हजारों रेडियो कर्मी र करोड़ों नेपाली को माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।

कार्यक्रम ज्योतिष वास्तु मुलुकभर का विभिन्न एफएम रेडियो एक हरेक बिहान 7 बजे देखि 8 बजे सम्म कार्यक्रम ज्योतिष वास्तु पंचांग राशिफल भू वर्तमान र भविष्य को पूरा जानकारी को लागी ज्योतिषाचार्य पंडित प्रेम प्रसाद सुवेदी को साथ में नेपाल भर एकै साथ प्रसारण हुने कार्यक्रम ज्योतिष वास्तु सुन्न नभुल्नु होला।

दी एआई टीवी मा हेर्नुस फुटबल को हर एक एक्साइटिंग मोमेंट एआई पिक्चर एंड साउंड संग अप टू 30% कैशबैक र 0% ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ बेस्ट एक्सचेंज वैल्यू प्लस 4 इयर्स फुल वारंटी अब घरमै स्टेडियम एक्सपीरियंस एलजी लाइफ्स गुड.